थो रेड नेपाल ख नेपाल भाषीय समाचार जिउ पेश पाखिन्दिना दिस थौ नेपाल सम्बत चिन्स सौ पी खुद तसलागा पारु विशेष अदालत पूर्व उप प्रधानमन्त्री व अर्थमन्त्री कृष्णप्रसाद पौडेल या त सम्पत्ति शुद्धिकरण या मुद्दा हाक्न सोनु तक थुने तया अनुसन्धान या त अनुमति बिगुदो विशेष अदालतका न्यायाधीश पी नारायण प्रसाद पौडेल हेमन्त रावल व उमेश कोइराला इजलास मिक वेक या त वेकया विशेष थते या त अनुमति बिगु ख नेकपा हिमालया नोको तक ज्यादी म वेक या त असार आठ गते सुर्खेत त छगु ज्याजो या दोथी नेपाल प्रहरी जुना ये हगु ख सरकार जनता या जलविद्युत ज्याजो पाखे डोल्पा या जगदुल्ला मत आयोजना या त देखेको ज्या न्याकुकुदो मुख सचिव खुकु मेगावट क्षमता या थो आयोजना सरकारी स्वामित्व स्थानीय बोटी व स्वदेशी वित्तीय स्रोत या त कघना देखा चङ्गु नेपाल या छगु दसुख प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष सञ्जय सापकोटिया कथ निगु तरहङ्गु पुखु देका चङ्गुदो छगु पाखे सचिव खुगु मेगावट व मेगु पाखे सचिव नि पेङ्गु मेगावट याना मुक निस व स्विगु मेगावट मत पिक्यागु तातुनादु राष्ट्रिय सभा या मिगय बैठक विनियोजन विधेयक 2083 या त विचार या धैगो प्रस्ताव बहुमत स्वीकृति आगुदो बैठकले अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ने विनियोजन विधेयक 2083 या त विचार या धैगो प्रस्ताव तयादीको ख सल सह बोलुङ्गु न्यसया लिसले अर्थमन्त्री डाक्टर वाग्ने शिक्षा लागे गरिब वर्ग या त अपुकेत दलित व गरिब या दुपी मस्ते त पौष्टिक नसा बिगु व मत लागा या प्रबन्ध या त सरकार प्राथमिकता तगो धाइदिल सभामुख डोलप्रसाद अर्याल सांसदीय ज्या व्यवहार व पह या त मतदाता व जनता थिति माध्यम पाखा सुयाचुङ्गु दैगु खन हेत्ना दिसे सकल सांसद थथगु ज्या त कया थप जिम्मेवार जिम्मा धैदिगुदो सङ्घीय संसद सचिवालय प्रदेशसभा सांसद मिनको नीति मिक घोषा गोगु अभिमुखीकरण ज्याजो ओले ज्या या झोले वेक्ल थथे धैदिगु ख वेक्ल कानुन देखेगु जनप्रतिनिधि मिग या बालागु अभ्यास पाखे सिका सेका क्यात व अदनशील व प्रधानमन्त्री जिमागु सुझाव ब्यादिल आ प्रतिनिधि सभा युगको नुगु खाटदु संसदीय विधि व प्रक्रिया त अझ थुके त व सांसदीय ज्या अझ लिचो लाके त थो ज्याजो गोसा गोयागु ख सभामुख अड्याल धाइदिल संसदीय प्रक्रिया विधि बालाक यङ्केगु नीति थो सेना ज्या उपलब्धिमूलक जुगु फलसा कयागुदु जनता पाखे निर्वाचित जुदुङका सांसदीय जीवन निजी पाखे सार्वजनिक जीवनले दुहाउनेको जुगले ओहे कथन जिम्मेवार जुमागुले वेक्ल

गन वने ह धौ नया वन थासा जग भिङ्गु साई जुइगु पलसा दु विक्रम सम्बत 2061 मङ्सिर 29 गते मन्त्र सरे कोचिना कथ 2062 असार 15 गते निसे राष्ट्रिय वा दिवस न्याकेगु याना हगु ख अख्तियार दुर्पयोग अनुसन्धान आयोग नुगु पर्यटन लागा मसिकेगु तातुना झ्यागु ज्याजोले भ्रष्टाचार जुगु अभियोगे बजाङ्या दर्गा थली गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नाप गुम विरुद्ध विशेष अदालतले मुद्दा दायर जुगुदु आर्थिक 2075-76 26 पाती भेरा गाउँपालिका 6 स्थित पाटपाली देकेगु नीति पी न्यागु लाख दा फ्यागु ख आयोग दुर्गाथली गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मकर बहादुर मण्डेल लेखापाल प्रेम प्रसाद पौडेल 26 पाथी भेरा गाउँपालिका इन्जिनियर हिक्मत रावल व सब इन्जिनियर बम बहादुर बोहरा विरुद्ध निगु लाख सिबे अपो बराबर या बिगो माग दाबी यागुदु अध्यक्ष 26 पाथी भेरा गाउँपालिका तत्कालीन नोको

निकु संस्कृतिया पितपज्या जुगुदु साहित्य अनुवश्यक प्रकाश सामी लस्कु सेनादीको लोकार्पण ज्याजोले साहित्यकार सन्तोष कुमार वस्ते साहित्यकार विक्रम भक्त जोशीले से अन्तर्क्रियात्मक रूपे ज्याजो याकादीको ख ज्याजोले चोवार ब्लुज बारे परिचर्चा साहित्य हमी रामचन्द्र मान सिंह ममता मृदुल पिन्सन चोवार ब्लुज बारे समालोचनात्मक टिप्पणी नाप यनादीको ख राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ठाउँ वा कने दे या तिथि

अब प्रस्तुत गर्दैछौँ आज रेडियो नेपाल बागमती प्रादेशिक प्रसारणमा साँझ 6 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमहरूबारे जानकारी।

मैं ले से तो काथ अंदर जाने था तेरी दिखात माने ये रोला जाने था तिम रही नम संसार चलने तू

उदास दिल में हजार किस्से सता रहे हैं, किसे बताऊं न कोई मेरा न मैं किसी का, मैं अपना दुखड़ा किसे सुनाऊं। सामिन, अभी इस गज़ल से आप लुत्फ अंदोज हो रहे थे, अब बाप से मुतालिक पेश खिदमत है एक दिल को छूने वाली सूफी बिरहा दर्द भरी दास्तान कवाली, जो एक वालिद के दर्द, उसकी मजबूरियों और ख़ानदान के लिए किए गए जिद्दोजहद और कुर्बानियों को बयान करता है। इस कवाली में एक वालिद की वो कहानी पेश की गई है जो हर दिन अपने ख्वाबों और सपनों को कुर्बान करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारता है। चूँकि आज के दौर में हर कोई पैसे कमाने के दौड़ में लगा हुआ है, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि एक वालिद अपने ख़ानदान वालों के लिए कितनी मेहनत करता है, कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करता है और अपने जज्बे को दबाकर सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खुशियों के लिए जीता है। इस सूफी कव्वाली में आपको मिलेगा एक वालिद का दर्द और संघर्ष, ख़ानदान की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की उम्मीदें, पैसों की मजबूरियाँ और सच्चे रिश्तों की हकीकत। इस कव्वाली में सिर्फ गीत ही नहीं है बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जिसने अपने वालिद को अपने सामने मेहनत करते देखा है या खुद उस दर्द को महसूस किया है। अगर आपने कभी अपने वालिद को चुपचाप मेहनत करते हुए देखा है तो कव्वाली सुनकर आपकी आंखों में ज़रूर आंसू आ जाएगा। लिहाजा अपना हेडफोन लगाकर इसे ज़रूर सुने और दिल की गहराइयों से इसे महसूस करें।

लसो फ्याफुल्ला तिनी मञ्जुश्री सम्म 2862 तालु बेलबोला ल छेपाचु सिंहा विक्रम सम्म 2083 साल असार ल छिसेठु मेरे मङ्गलबार छु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ साङ्गुरी राङ्द डेनमुलाङ सूर्य मोक्तान सङ्खुवासम्म जुङ्ला सिलिचोङ गाउँपालिका घिक्री ग्रेन नामताइबली चखावा ढुइसे गोर्खी स्वास्थ्य केन्द्र ल छ्याम्री गोर्ङी चुसे दिम गते विस्थापित तनाला पुमुला जुङ प्रहरी गेदिमला इन्सपेक्टर धनबहादुर राजवंशीसे माछा तेन्छोङला मनकुमार राई नौबहादुर राई मनबहादुर राई धानराम राई तिलप्रसाद राई नरेश कुलुङ योगेन्द्र राई विजय राई मणिधन राई सन्तोष राई नन्दु राई धनबहादुर राई कल्पना राई आश्रम राई प्रविशुक राई अग्रज राई पूर्णिमा राई फर्निन्द्र फगेन्द्र राई बाबुराम राई विदुर राई लद्दिम गदै ढुइसे बोरबमुला विशेषङ बमुला चरणुला से ढुइसे तोन्छुङ्री मुबा सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी जोखिमरे पर्वता बमुला विसाम सिलिङ चौक गिक्री मुबा कुन्ती राई लाम मेन्दुङा धनपूर्ण राईला मेन्दुङिस मङ्गलबहादुर राईला मेन्दुढु सुख प्रसाद राईला मेन्दुभ्ली मिरा राईला मेन्दुङा थेन धनमान राईला मेन्दु सोम्मी विस्थापित बमुला चरणुला से थेरी बिजुलीला पोल गदे ब्योङनला बलिसा ग्यार्ज ढुबिमा लामा दिम थेमे गदे धोपधोपरी टिबारी बाध्यता बमुला चुरुन्ताङले सिलिङचोङ गाउँपालिका से तिनी गोर्गीको कागुर छिसे जोखिम मुबा ग्लारी टिबन खाबा हिलबदा सुरक्षित ताबारी थेन सुरक्षित ग्लारी लेबारी मोहिजनला बमुला ग्रेन नाम ताइबला ताइबन लाबल इच्छा खाबा फाल्थेन ढुइसे मेची राजमार्गरी मुबा इलाम झापा सडक घ्याम नङनेला बमुला इलाम नगरपालिका कु राजदुवाली बिबा ग्लारी मुबा सडक घ्याम ढुबाला छ्याम्रे ग्ला ग्लारी ढुइ खाबा सही सवारी साधन खाबा निबारे आखाम नठी बमुला सडक घ्याम नङमा लिच्छा इलाम घ्याम झापा रिथेन झापा घ्याम इलाम रि खाबा निबा बिनान मिगदे घ्याम गुङ्रेन अलपत्र ताबलिच्छ सडक घ्याम ठङबारी सम्बन्धित निकाय से डोजर थिएन प्राविधिक टोली पुइब मुसाइनन ग्रेन नाम ताइसिन टिपासे ढुइ भ्याङबारी खाम्बा आरे विषय सम्बन्धित निकाय से पाङबा हिन्ना मौसम ज्यापतामन खाबली सचेकेन सडक घ्याम ठङबारी खाम्सेला मुला विषय सम्बन्धित निकाय से पाङबा मुला जन प्रशासन थेन सुरक्षा निकाय से आनिना आतबा थेन आलना आतबा गेबीमा स्यान गेरी दिमग्याम आथुनमारी थुन्नुन तोसम सडक ग्याम्ला अवस्था घोषित चेकेन थुनमारी थेन जोखिम मुबा ग्लारी ग्लाला मिदा विशेष सतर्कता बारी मोइजनला बमुला चुराङ्नु लसी हेटौडा याम्बु सडक ग्याम कान्ति लोकपथला बिम्फेदी गाउँपालिका भ्रेरी मुबा भरेङ गाङ्री तिनी सियो हेन्छन् यातायात सेवा सेङबरी आखाम्ना टिपमुला जुन प्रहरी गेदिम्ला अनुसार कान्ति लोकपथ सडकला मकवानपुर थिएन ललितपुर जोङला मुरी मुबा बागमती गाउँपालिकालाई लामन ग्लारी ढुइ निपमुला थेर्ला ढुइ भ्याङबारी नुन दान्देकाहरू तसिटीमा चाहिँ मौसम ज्याबतावली सचेकेन ढुइ भ्याङसेला मुला बेसी पाङबमुला जुन प्रहरी गेदिम्ला गेदिम मकवानपुर र सुङ्गुन माधव प्रसाद काफले से अर्को सूचना आखादै दोना थे ग्याम सवारी साधन आसेङबारी थिएन स्यान वैकल्पिक सडक घ्याम प्रयोगला बारी मोइजेनला बमुला चुनिन गुङ्री जल थिएन मौसम विज्ञान विभाग से तिनी थिएन नाङ्गार सियोला स्यारतराईला लामान ग्लारी ग्रेन नाम ताइबारी खाम्ला बेसी पाङबाली छ जुन प्रशासन गेदिम झापा से थेरी भाल थिएन डुबान ल जोखिमरी जोखिम द च्यासे सतर्कता बारी थेर्ला हिर्बादा मोइजेनला बमुला जुन प्रशासन गेदिम से गुर्गे कागुर छिसे ग्रेन नाम ताइसम मुठेङसम थेन भाल खासम जोखिम मुबा ग्लाला युलबादा सचेतता बारिनन् मोइजेनला बमुला प्रतिनिधि सभाला सुङ्गुन डोलप्रसाद अरियाल छे युल्ला समृद्ध सुबारी सुशासन कायमला बारी थिएन भ्रष्टाचार त थुम्नला बारी युल्ला गोरसोम्नुन ग्रेन अङ्गगादे डिकबारी थिएन डिक्सी गेला बारी खाम्तो बम्राङ बमुला विशेष संक्षेप बमुला ढुचुसे ब्रेचा संसद दिन्छन् लाप्सरी तिनी सिंह दरबार सिङमा गेखोरी लेङमा थान्सिमान सुङ्गुन अरियाल छे युल्दा योनबेमा योना विकासला बारी समृद्ध सुबारी कार्यपालिका न्यायपालिका थिएन व्यवस्थापिका गोरसोम्नुन डिक्सी गेला बारी खाम्दोला विशेष संक्षेप हिन्ना चुरानुला से राष्ट्रिय सभाला चोहो नारायण प्रसाद दहाल से संघीय संसद हिर्वाला ताम ज्ञानबा आवश्यकता पुरा लाबथेन हिर्वा से मायबा से पिनमा ग्ला हिन्न विषय सुङ्क्षेप मुला चोहो दहाल से संसदीय काठुइदा देनमा ताम्रे आधारित मर्यादित रचनात्मक थिएन परिणाम म्राङबारी खाम्बा सोदोबा दान्दे म्राङ सिटीमा से दलीय स्वार्थ बिमा तोर रेसी हिर्वाला घेला भरि संसद गदेदा मोइजेल्ला शुभ मुला सूचना थिएन संसार डोन डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा से हुलाक से बदा आधुनिक बिरान छेन विश्वासला बारी खाम्बा थिएन युल्बा से सेम निबा सोसी सरकारी थिएन युल्बाला दिम दिमरिन दोन सरकारी सेवा युल्बाला दिम दिमरिन दोनला बारी खाम्बा प्रभावकारी माध्यम सो बारी खाम्से टिप मुला विशेष संक्षेप मुला संसार डोन डाक्टर तिमल सिन्हा से हुलाक सेवा विभाग से तिनी सेङमा हुलाक सेवादा आधुनिक सोभा सम्बन्धीलाई ग्रेन स्तरीय काठी गेखोरी लेङमा थान्सिबान हुलाक सेवादा देपेन ज्यापा सोभारी सरकार से योजना सोसी गेलामन खाबा मुबा थिएन धान्दे ज्यापा परिणाम खासी टिप मुला विषय संक्षेप हिन्ना
रुङसाब्लुन शिशिर खनाल से कूटनैतिक वांश चेकेन हिल्ला नोर्थुम द पोबारी खाम्बा से दान्देला सरकार से प्रभावकारी थिएन। परिणाम राङमा गेलाबारी बाङ्लाबन खापमुला विशेष संक्षेप मुला ब्लुनखाङ से सिङबा प्राध्यापक यदुनाथ खनाल व्याख्यान श्रृङ्खलाला न्याच संस्करण गेखोरी लेङ्गमा थान्छुबान ब्लुन खनाल से मुख्युला ग्रेनग्रेन हिल्का दे दान्दे प्रतिस्पर्धा लाबन खापा से याङला युल्ला टाङ्गा आपूर्ति थिएन महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार से मुख्युल थिएनला बेलबाधा प्रभाव तानाला सिटी बम्बला विशेष संक्षेप हिन्ना। सानम व्यवस्था सहकारी सङ्घीय मामिला थिएन सामान्य प्रशासन ब्रोन प्रतिभा रावल थिएन मधेस प्रदेशलाई ग्रेन ब्रोन कृष्णप्रसाद यादव रूप तसै स्थानीय तहरी म्याङमा समस्या गर्दा छाङ्नलाबारी थिएन सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह डिक्सी गेलाबारी खाम्दा ताम्रे काठीला शुभमला रूपतामा स्थानीय तहदा कर्मचारी व्यवस्थापन लादोबा दरबन्दी टेक्न लादोबा छोधे बजेट फेदोबा रङमा स्यान लामन समस्या गर्दैलाई फेरि काठीला बोमुबा विषय ब्लोनला लोन खाङसे पाङबा हिन्ना। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष रि सरकार से मेन्दो सोम खेन पुगा दिँदा मूलमिरी मनोनयन लाबमुला कोषलाई चोहो सानम रिथेन पर्यावरण ब्लुन गीता चौधरी से कोषलाई ठिम अनुसार मोक्युलाई खेन पुगा दिँदा कोषलाई मूलमिरी दामसुपे हिन्ना कोष त मोक्युलिन गोसेन लाबारी थिएन वैज्ञानिक संरक्षण अझ ज्यापसुबारी संयुक्त अधिराज्य बेलायत हाउस अफ लर्डला लर्ड क्यामुस बिलियन स्टोनर मोक्युलसेन गोसेबा खेनपु डाक्टर एरिक डाइन स्ट्राइन थिएन अस्ट्रेलियन प्राध्यापक बिन्डी राइट द मूलमिरी मनोनित लाभिन्ना। काभ्रे जुङ्री बर्ड फ्लू र संक्रमण लेसिङ टिपासे दान्देनुन दान्देदोनामा तोङ ब्लिचुई बिमा लामा हाँस्ते नागा दसाइसे भिपमुला तिलाई साता गाछ हेन्छ बर्ड फ्लू र संक्रमण लेसे नागा गादे सिबारी वाङबली छ चुङबारी बिसी नाभा तोङ ब्लिसे गार्जा निस बिमा लामा हाँस्ते लियर्स नागा गादे साइसे भिपमुला बिसे जुङ पशु सेवा गेदिम धुली खेल्छे पाङ्बा हिन्ना। वसेम मोरक्को सही नेदरल्यान्ड्स द पेनाल्टी सुट आउट ब्रेन लबान फिफा विश्वकप फुटबल 2026 गोर्चुसे ढु समहरी वाङबा बोला मेक्सिकोला मोन्टेरे रङ्गशाला रे तिनी क्लाङमा खेल्ने मोरक्को से नेदरल्यान्ड्स द पेनाल्टी सुट आउट रि गोल्सोम छेप्से विश्वकप फुटबललाई गोल चुइसे ढु समहरी वाङबा खिन्ना। नेदरल्यान्ड्स विसाम गोलङ्गी छेपमुबा गोर्गी ह्युल्से क्लाङमा तिनीलाई खेल लामान छुबमुबा चुराडुला से फिफा विश्वकप फुटबल 2026 प्रतियोगितालाई राउन्ड अफ 32 खेल रि ब्राजिल से जापान द ब्रेनला बमुला अमेरिकाला ह्युस्टन खेल मैदान रि तिनी क्लाङमा खेल रि ब्राजिल से जापान द गोल छेपमुबा विषम जापान से गोलगी छेपमुबा ब्राजिल एनुन गोर्चु से ढु समहरी वाङबमुला चुनन साङ्गुर गदेला छ्याम्री तिनी त तामाङ साङ्गुर जिन्जी रेडियो नेपाल ज्ञान मल्लासिगु लसो फ्याफुल्ला।

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झासा सुनल जा मैथिली भाषामे समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नेपाली सबके जीवन दर्शन सेवा करुणा प्रेम मानवता शान्ति के उच्चतम अभ्यास सँ अभिप्रेरित भेल बतौलनि अछि। रोटरी क्लब अफ भादगाउँद्वारा राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित सम्मान कार्यक्रम के सम्बोधन करदै ओ सहकार्य सद्भाव आ सहिष्णुता सँ असल मार्ग में चलल प्रेरित करबाक बतौलनि। राष्ट्रपति पौडेल निस्वार्थ भाव सँ मानव सेवा में समर्पित होयबे सबसँ बड़का धर्म अछि आ ओ स्वयं एहि में लागल कहैत विश्व शांति अंतर्राष्ट्रीय सहकार्य मानव कल्याण के क्षेत्र में रोटरी देखाने प्रतिबद्धता आजुक बदलित परिवेश में आर सान्दर्भिक होइत गेल बतौलनि अछि। कार्यक्रम में 14 पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तथा क्लब के संस्थापक अध्यक्ष के सम्मान कयल गेल छल। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा नेपाल टेलीकॉम के सेवा प्रवाही मैत्री शीघ्र आ गुणस्तरीय सेवा प्रवाह के थप प्रभावकारी बनाबै लेल निर्देशन देलनि अछि। संचार मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा आज सुन्धरा स्थित नेपाल टेलीकॉम के सूचना प्रविधि निर्देशनालय अंतर्गत रहल बिजनेस सपोर्ट सिस्टम विभाग तथा दूरसंचार कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में सेवा प्रवाह के आर प्रभावकारी पारदर्शी आ डिजिटल प्रणाली में आधारित बनेबा लेल निर्देशन देलनि अछि। निरीक्षण के क्रम में नेपाल टेलीकॉम के प्रबंधक शालिक राम सुवेदी सूचना प्रविधि निर्देशनालय मार्फत संपादन भ रहल कार्य तथा टेलीकॉम के बिलिंग प्रणाली के संदर्भ में जानकारी करौने छलथि। संचार मंत्री तिमिल सिन्हा बिलिंग प्रणाली ग्राहक व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधि में आधारित सेवा प्रवाह के विषय में जानकारी लेने छलथि। एहि पश्चात ओ सुन्धरा स्थित दूरसंचार कार्यालय के निरीक्षण कऽ सेवा लेवायल सेवाग्राही संग प्रत्यक्ष संवाद कयने छलथि। नया सिम कार्ड लेबय के बिल भुगतानी ई सिम सेवा टेलीफोन तथा इंटरनेट समय सेवा संबंधी अनुभव के संदर्भ में सेवाग्राही संग जानकारी लेने छलथि। सेवाग्राही कार्यालय में सेवा लेबय लेल लंबा समय लाइन में बैसल नहीं पड़ल तथा अपेक्षाकृत शीघ्र सेवा प्राप्त भेल प्रतिक्रिया देने छलथि। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा हुलाक सेवा के आधुनिक विश्वसनीय नागरिक मैत्री बनवित सरकारी सेवा नागरिक के घर धरि पहुँचायब प्रभावकारी माध्यम के रूप में पुनः स्थापित कयल गेल बतौलनि अछि। हुलाक सेवा विभाग द्वारा आयोजित हुलाक सेवा के आधुनिकीकरण संबंधी उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रम में संचार मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा हुलाक सेवा के पुनर्जागरण के लिए सरकार योजनाबद्ध रूप में आगू बढ़ रहा अछि आई के सकारात्मक नतीजा सेहो देखा लागल जानकारी दिलेन। सरकारी सेवा के प्रभावकारिता बढ़ावत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र बीच सहकार्य आवश्यक रहल चर्च करे तो सब काज सरकार एसगरे नहीं कर सकबाक कारण निजी क्षेत्र संग साझेदारी आ सरकारी निकाय बीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहल धारणा रखलन। अहिना हुलाक सेवा के कमजोर बनित गेल संस्थागत छवि के सुधारक लेल कर्मचारी के इच्छा शक्ति नवीन सोच आ सेवामुखी कार्यशैली आवश्यक रहल बतौलन। राहदानी सवारी चालक अनुपत मनी पत्र लगायत सरकारी कागजात नागरिक के घर में पहुँचेबाक व्यवस्था सेवा प्रवाह में अधिक परिवर्तन आनल गेल चर्च करत ओ ऐसे नागरिक के समय लागत आ झंझट कम हेबाक संगे सरकारी सेवा प्रति के विश्वास सेहो बढ़ल बतौलन। कार्यक्रम में संचार मंत्रालय के सचिव लक्ष्मी कुमारी बसनीत डिजिटल युग में सेहो हुलाक सेवा के आवश्यकता ओतबे रहल चर्च करत नागरिक के घर घर में सरकारी सेवा पहुँचेबाक उद्देश्य हिसाबे विभाग अखन धरि 7 सरकारी निकाय संग समझदारी कह चुकल जानकारी देलनि अछि। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय विदेशी मूल के आवासीय अनुमति लक लंबा समय से कार्यालय में अनुपस्थित रहल 4 कर्मचारी संग स्पष्टीकरण मांग कयलक अछि। मंत्रालय सूचना जारी करैत छुट्टी समाप्त भेलाक बाद अपन पदाधिकार रहल कार्यालय में हाजिर नहीं भ विदेशी में बसोबास कर रहला से हुनका सब ऊपर कानूनी प्रक्रिया आगू बढ़ौलक अछि। निजामती कर्मचारी पद में बहाल रहित काल विदेशी देश के आवासीय अनुमति लेब वा ओहि के लेल आवेदन सेहो देब नहीं पावे के कानूनी प्रावधान रहल अछि। स्वीकृत छुट्टी समाप्त भेलाक बाद 30 भीतर कार्यालय में उपस्थित हेबाक चाही मुदा अनुपस्थित रहकर निजामती सेवा ऐन विपरीत के कार्य कैला सा हुनका सबके स्पष्टीकरण पूछल गेल अछि। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल निजामती सेवा में अनुशासन और जवाबदेहिता के थप मजबूत बनाब एहन गतिविधि पर निगरानी बढ़ाल गेल जानकारी दिलेन। मंत्री रावल निजामती सेवा में अनुशासन कायम करबाक लेल मंत्रालय प्रतिबद्ध रहल बतबैत कार्यालय में अनुपस्थित रहल कर्मचारी के अवस्था के संदर्भ में अध्ययन भ रहल कानून हिसाबे आवश्यक निर्णय कयल जेबाक जानकारी दिलेन। मंत्रालय कार्यालय में अनुपस्थित भ विदेश में बसोबास कर रहल तथा लंबा समय से संपर्क विहीन रहल अन्य कर्मचारी के अवस्था के संदर्भ में सेहो अध्ययन तथा खोजी कार्य के तीव्रता देने जनौलक अछि।
डिभिजन वन कार्यालय धनुषाका आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनुषाके समन्वय तथा चुरे नदी प्रणाली सरोकार पत्रकार समाज धनुषाके सहजीकरणमा आई धनुषाके ढल्केवरमा आयोजित वन तथा वन्यजन्तु व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वक्ता सब मानव बिनाके चुरे आइके वनके संरक्षण कठिन भेल बात मानव सहितके वन्यजन्तुके वैज्ञानिक व्यवस्थापन आवश्यक रहल बतौलिन्। वन क्षेत्रमे चरीचरण पिबावला पानी तथा अन्य तरहके आहारमे कमी भेलाके कारणे वनमे आश्रित रहल वन्यजन्तु सब बस्तीमे पैसकर धनजनके क्षति करित आबि रहल वनमे पिबावला पानी तथा आहारके व्यवस्थापन जरूरी रहल बतौलनि अछि। कार्यक्रममे मध्य प्रदेशके वन तथा वातावरण मंत्री शंकर प्रसाद चौधरी वन तथा वनमे रहवला वन्यजन्तु मानवके शत्रु नै भ मित्र रहल कहैत सह अस्तित्वके साथ व्यवस्थापन जरूरी रहल बतौलनि अछि। मध्य प्रदेशके वन निर्देशक जगन्नाथ प्रसाद जायसवाल चालू आर्थिक वर्षमे निर्देशनालयद्वारा वन्यजन्तुके आक्रमणमे पड़िकऽ मृत्यु भेल 4 गोटेके 10 लाखके हिसाबसँ क्षतिपूर्ति देबाके सङ्गे 55 गोटे कृषकके बाली नाली नष्ट कयलाके कारण राहत देल गेल बतौलनि अछि। डिभिजन वन कार्यालय धनुषाके प्रमुख एवं वन विज्ञ विनोद सिंह मानव सहितके चुरे आ वन्यजन्तुके संरक्षण आवश्यक भेल बतौलनि अछि। साउदी अरब सरकार ओतयके विभिन्न जेलमे सजा काटि रहल 33 नेपाली कैदीके आम माफी देलक अछि। रमजान महिनाके अवसर पर साउदी सरकार एहि नेपालीके आम माफी देलक अछि। नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय आ विज्ञप्ति जारी करैत नेपाली नागरिकके शाही माफी देनेमे साउदी अरब सरकार प्रति हार्दिक धन्यवाद तथा कृतज्ञता प्रकट कयलक अछि। नेपाल सरकार साउदी अरबके एहि सहृदय कदमके उच्च प्रशंसा करैत एहिसँ नेपाल आ साउदी अरब बीचके लम्बा समयसँ मित्रता सद्भाव आ प्रगाढ़ द्विपक्षीय सम्बन्धके प्रतिबिम्बके रूपमे लेने जनौलक अछि। रियाद स्थित नेपाल दूतावास मार्फत नेपाल सरकार कयने विशेष अनुरोधके आधार पर साउदी सरकार नेपाली कैदीके ई माफी प्रदान कयने परराष्ट्र मन्त्रालय स्पष्ट कयलक अछि। शाही माफी भेटल नेपाली नागरिक साउदी अरबके आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा कऽ शीघ्र नेपाल घुरबाक मन्त्रालय जनौलक अछि। आब खेल समाचार। 4 बेरके विश्व कप विजेता जर्मनीके हराकऽ फिफा विश्व कप 2026के प्री क्वार्टर फाइनलमे स्थान बनौने खुशियालीमे पैराग्वेमे आइ राष्ट्रिय छुट्टी देल गेल अछि। अमेरिकाके बोस्टन रङ्गशालामे आइ भिन्सरे भेल राउंड अफ 32के खेलमे पैराग्वे जर्मनीके पेनाल्टी सुट आउटमे 4-3 गोलसँ हराबैत अन्तिम 16 स्थान बनौलक अछि। छनौट चरणमे ब्राजिल अर्जेन्टिना जेहन मजबूत टीमके हराकऽ विश्वकप यात्रा तय कयने पैराग्वे एहि बेर समूह चरणेसँ आक्रामक प्रदर्शन कऽ रहल अछि। निर्धारित 90 अतिरिक्त समयमे 1-1 गोलके बराबरी समाप्त भेलाक बाद खेल पेनाल्टीमे पहुँचलापर नतीजा पैराग्वेके पक्षमे गेल छल। पेनाल्टीमे पैराग्वेके माउरिसियो गुस्ताभो गोमेज माथिसियस गालार्जा आ जोस कालाने गोल कयलनि। जर्मनीक लेल कप्तान जोसुआ किमिच जमाल मुसियेला आ नादियम अमेरिकी मात्र गोल कर सकलथि। अन्य प्रहारके पैराग्वेके गोल रक्षक विफल कऽ देने छल। ऐतिहासिक जीत पश्चात पैराग्वेके राष्ट्रपति सान्टियागो पेना देशे भेल राष्ट्रीय छुट्टीके घोषणा कयलनि अछि। जारी विश्वकपमे समूह डीसँ प्रतिस्पर्धा कयने पैराग्वे उत्कृष्ट तेसर टोलीके रूपमे अन्तिम 32 पहुँचल छल। समूहमे पैराग्वे अमेरिका सङ्ग 2-1 पराजित भेल छल। अहिना टर्कीके 1-0 गोलसँ हराने पैराग्वे ऑस्ट्रेलियाके गोल रहित बराबरीमे रोकने छल। आब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मध्य पूर्व युद्ध विराम पश्चात श्रीलंका आई ईंधनके मूल्यमे 6% धरि कटौती कयने जनायल गेल अछि। श्रीलंकाके पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन डीजल 25% प्रति लीटर घटाबि कऽ 382 आ पेट्रोल 20% घटा कऽ 414 कायम कयलक अछि। अमेरिका ईरान स्वयंसँ बीच द्वंद्व अन्त करबाक लेल वार्ता करबाक सहमति भेल पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जाके मोलमे आयल तीव्र गिरावट सङ्गे श्रीलंकामे ऊर्जाके मोलमे कटौती कयल गेल जनाल गेल अछि। गत फेब्रुअरी 28 अमेरिका आ इजरायल ईरान ऊपर आक्रमण कयलाक बाद श्रीलंका पेट्रोल आ डीजल के मोल लगभग 50% बढ़ौने छल। द्वंद्व के समय में उच्च आयात आ लागत बीच संतुलन कायम करबाक लेल श्रीलंका बिजली के शुल्क सेहो 1/3 वृद्धि कयने अधिकारी सब बतौने छल। श्रीलंका आवश्यक सब तेल खरीद करय वाला आ बिजली उत्पादन के लेल आयातित कोयला में सेहो निर्भर रहक अवस्था रहलासँ मध्य पूर्व में जारी लंबा द्वंद्व से कमजोर आर्थिक अवस्था के प्रभावित करबाक सकबाक चेतावनी सेहो देने छल। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवाससँ सुनि रहल मैथिली भाषामे समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। 68वें संसद दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित, देश की समृद्धि और भ्रष्टाचार के अंत के लिए राज्य के तीनों प्रमुख अंगों की भूमिका महत्वपूर्ण, सभामुख डोल प्रसाद अर्याल का कथन। सऊदी अरब सरकार ने रमजान के अवसर पर विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 33 नेपाली नागरिकों को दी आम माफी। विदेशी रोजगार के नाम पर एजेंटों द्वारा हो रही ठगी पर रोक लगाने के लिए श्रम मंत्रालय ने विशेष अभियान की घोषणा। और यूरोप में भीषण गर्मी की लहर से इस वर्ष अब तक 9.5 करोड़ लोग प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने कहा कि नेपाली समाज का जीवन दर्शन सेवा, करुणा, प्रेम, मानवता और शांति के सर्वोच्च आदर्शों से प्रेरित है। रोटरी क्लब ऑफ भादगांव द्वारा आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति पौड़ेल ने कहा कि सहयोग, सद्भाव और सहिष्णुता लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि निस्वार्थ भाव से मानव सेवा में समर्पित होना सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानव कल्याण के क्षेत्र में रोटरी की प्रतिबद्धता आज के बदलते वैश्विक परिदृश्य में और भी अधिक प्रासंगिक होती जा रही है। समारोह में 14 पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नरों तथा क्लब के संस्थापक अध्यक्ष को सम्मानित किया गया। प्रतिनिधि सभा के सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने कहा कि देश की समृद्धि, सुशासन और भ्रष्टाचार अंत के लिए राज्य के तीनों प्रमुख अंगों के बीच कार्यगत एकता और समन्वय अनिवार्य है। 68वें संसद दिवस के अवसर पर आज सिंह दरबार में आयोजित कार्यक्रम में सभामुख अर्याल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण और देश को तेजी से समृद्धि बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की गति तथा भावना में तालमेल होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि संविधान का अक्षरशः पालन और विधि के शासन की अवधारणा को किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं होने दिया जाना चाहिए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल ने कहा कि संघीय संसद को जनता की भावनाओं, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को सच्चा प्रतिबिंब बनाना चाहिए। कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री शोभिता गौतम ने कहा कि संसदीय अभ्यास को प्रभावी और उपलब्धिमूलक बनाने के लिए बहस को केंद्र में जनता के मुद्दे को होना चाहिए। सऊदी अरब सरकार ने वहां की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 33 नेपाली कैदियों को शाही माफी प्रदान की है। नेपाल सरकार के परराष्ट्र मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में रमजान के अवसर पर 33 नेपाली नागरिकों को शाही माफी दिए जाने पर सऊदी अरब सरकार के प्रति हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल सऊदी सरकार अब से इस मानवीय कदम की सराहना करती हुई और इसे नेपाल तथा सऊदी अरब के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक मानती है। विदेश मंत्रालय के अनुसार रियाद स्थित नेपाली दूतावास के माध्यम से नेपाल सरकार द्वारा किए गए विशेष अनुरोध के आधार पर सऊदी सरकार ने इन नेपाली कैदियों को शाही माफी प्रदान की। मंत्रालय ने बताया कि शाही माफी पाने वाले ये नेपाली नागरिक सऊदी अरब की आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद शीघ्र ही नेपाल लौटेंगे। विदेशी रोजगार के नाम पर एजेंटों द्वारा की जा रही ठगी, साइबर अपराध और आर्थिक शोषण को समाप्त करने के लिए युवा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक विशेष राष्ट्रीय अभियान की घोषणा की है। मंत्रालय ने आज आयोजित कार्यक्रम में अवैध एजेंटों के विरुद्ध अभियान सुरक्षित वैदेशिक रोजगार के लिए नामक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म, वेबसाइट और मोबाइल ऐप सार्वजनिक किया। कार्यक्रम में युवा, श्रम एवं रोजगार मंत्री रामजी यादव ने कहा कि यह अभियान गैरकानूनी एजेंटों से मुक्त वैदेशिक रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। मंत्री यादव ने कहा कि किसी एक व्यक्ति या समूह के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उसे मुख्य साक्ष्य मानकर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि यह प्रणाली डेटा आधारित सुशासन की शुरुआत है। मंत्रालय ने स्थानीय स्तर से ही श्रम स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए फेमिस प्रणाली के माध्यम से देश की सभी 753 स्थानीय इकाइयों के रोजगार सेवा केंद्रों के कर्मचारियों को यूजर आईडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमल सिन्हा ने नेपाल टेलीकॉम को उपभोक्ता मैत्री, तेज और गुणवत्तापूर्ण सेवा को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया है। संचार मंत्री डॉक्टर तिमल सिन्हा ने आज सुंदरा स्थित नेपाल टेलीकॉम के सूचना प्रविधि निर्देशनालय के अंतर्गत बिजनेस सपोर्ट सिस्टम विभाग तथा दूरसंचार कार्यालय का निरीक्षण करते हुए सेवा वितरण को आर्थिक प्रभावी, पारदर्शी और डिजिटल प्रणाली पर आधारित बनाने का निर्देश दिया। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि डाक सेवा को आधुनिक, विश्वसनीय और नागरिक मैत्री बनाते हुए इसे सरकारी सेवाएं नागरिकों के घर घर तक पहुंचाने के एक प्रभावी माध्यम के रूप से पुनर्स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार पारंपरिक डाक सेवा को प्रविधि मैत्री और विशिष्टीकृत सरकारी कुरियर सेवा के रूप में विकसित कर रही है तथा नागरिकों के घर द्वार तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने के अभियान को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। हुलाक सेवा विभाग द्वारा आज आयोजित डाक सेवा के आधुनिकीकरण संबंधी उच्च स्तरीय संवाद कार्यक्रम में संचार मंत्री डॉक्टर तिमल सिन्हा ने कहा कि डाक सेवा के पुनरुत्थान के लिए सरकार योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ रही है। आज ही चलचित्र विकास बोर्ड की 26वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते हुए सूचना एवं संचार मंत्री विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा कि सरकार फिल्म उद्योग की वास्तविक आवश्यकताओं को संबोधित करने वाले कानून, नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चलचित्र विकास बोर्ड को फिल्म क्षेत्र के संरक्षक की भूमिका निभानी चाहिए। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि #1415# गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाँकी समाचार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तप बहादुर मगर ने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियां मानवाधिकार संरक्षण में बड़ी बाधा बनी हुई है। आयोग द्वारा आयोजित मानवाधिकार शोध संवाहक तथा पूर्वीय चिंतन और मानवाधिकार विशेषांक की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि समाज में अब भी कुरीतियां मौजूद है जिससे मानवाधिकारों की रक्षा कठिन हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जातीय भेदभाव पहले की तुलना में काफी कम हुआ है। उन्होंने कहा, धोती बदलकर भोजन करना या शुद्धिकरण के लिए पानी छिड़कने जैसी प्रथाएं अब लगभग समाप्त हो चुकी है। समाज धीरे धीरे बदल रहा है। लगातार वर्षा के कारण हेटौड़ा काठमांडू कांति लोक मार्ग के अंतर्गत भीमफेदी गांव पालिका 8 स्थित भरेंग डाड़ा क्षेत्र में सुबह से यातायात पूरी तरह से बाधित है। जिला पुलिस कार्यालय के अनुसार मकवानपुर और ललितपुर की सीमा से लगे बागमती गांव पालिका के विभिन्न स्थानों पर भी भूस्खलन हुआ है। लगातार वर्षा के कारण मलबा हटाने में कठिनाई हो रही है और मौसम साफ होने के बाद ही सड़क को बहाल किया जा सकेगा। लगातार वर्षा से आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण मेची राजमार्ग के अंतर्गत इलाम झापा सड़क खंड पूरी तरह बंद हो गया है। इलाम नगर पालिका 9 के राजदुआली क्षेत्र में सड़क बह जाने के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन होने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप्प हो गई है। सड़क बंद होने के कारण इलाम और झापा के बीच यात्रा करने वाले यात्री रास्ते में फंस गए हैं। साथ ही दैनिक उपभोग की वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। बीते फागुन 21 को सम्पन्न प्रतिनिधि सभा चुनाव के दौरान सबसे अधिक भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई गई। यह जानकारी सेंटर फॉर मीडिया रिसर्च के एक अध्ययन में सामने आई है। सीएमआर के कार्यकारी निदेशक तिलक पाठक ने बताया कि चुनाव के दौरान फैली कुल फर्जी सूचनाओं में लगभग 87% सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित हुई है। अध्ययन के अनुसार इनमें सबसे बड़ा माध्यम फेसबुक रहा। इसके बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा तैयार की गई सामग्री भी भ्रामक सूचनाओं का प्रमुख स्रोत पाई गई। ऐसी सामग्री भी अधिकतर सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्रसारित की गई, जबकि कुछ मामलों में अन्य माध्यमों का भी उपयोग किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात यूएई भेजने के नाम पर 45 लाख रुपए की ठगी करने वाले 41 वर्षीय रामदास महर्जन को गिरफ्तार किया गया है। काठमांडू पत्रिका अपराध अनुसंधान कार्यालय टेकू के पुलिस अधीक्षक शरद कुमार थापा छेत्री के अनुसार काठमांडू के चंद्रागिरी नगर पालिका 8 निवासी महर्जन को काठमांडू से गिरफ्तार किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूरोप में इस वर्ष भीषण गर्मी की लहर ने व्यापक असर डाला है। अब तक लगभग 9.5 करोड़ लोग अत्यधिक तापमान से प्रभावित हुए हैं। कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जिससे जनजीवन, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ गया है। स्पेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, ग्रीस और बाल्कन क्षेत्र के कई देशों में हीट अलर्ट जारी किए गए हैं। कई शहरों में लोगों को दोपहर के समय में घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है, जबकि स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई है और बाहरी कार्यों पर भी सीमित प्रतिबंध लगाए गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार सबसे अधिक खतरा बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों को है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण और श्वास संबंधी समस्याओं के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कई क्षेत्रों में लगभग जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी तेज हुई है, जिससे हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। और 68वें संसद दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। देश की समृद्धि और भ्रष्टाचार के अंत के लिए राज्य के तीनों प्रमुख अंगों की भूमिका महत्वपूर्ण। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल का कथन। सऊदी अरब सरकार ने रमजान के अवसर पर विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 33 नेपाली नागरिकों को दी आम माफी। विदेश रोजगार के नाम पर एजेंटों द्वारा ठगी पर रोक लगाने के लिए श्रम मंत्रालय ने विशेष अभियान की घोषणा। और यूरोप में भीषण गर्मी की लहर से इस वर्ष अब तक 9.5 करोड़ लोग प्रभावित। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
4: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
5: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
6: स्टार 14 15 ह्यास डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

0: रेडियो नेपाल, नयाँ नेपालको समावेशी आवाज। राष्ट्रिय रेडियो, राष्ट्रको संचार।
1: I'm sorry, Nami. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे प्लीज माफ कर दो।
2: It's over. अब सब कुछ खत्म हो चुका है शायद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन